ब्रजेंद्र वहिंसा अमदी आईसीएस ओइनाम थौरम ताबिरिबा शाकासबानी इम्फालगी कंगला चैनल दगिने चैनल सिदा नसी नोंमगी थामजरिबा थौरम सिंह निंगसिंजरी अयुकी पुंग तरुक मिनिट तारा चतप मतमदा लौसिंगोगी वाफमदा ताहनजगनी फौ लिंथोकनबा सेम साबा पुख्रम्बम इनाव बिचनु नसक पमैते इसै थामजरी पुंग तरुक मिनिट तारा मंगा पुंग तरुक मखाई ताब मतमदा रूप रागगी सैसक पसिंगदगी मतम इसै सिंग लांथोकजगनी तोंगान तोंगान बो सैसक पसिंग नसक पमतम इसै सिंग थामजरी पुंग तरुक मिनिट निफु मंगा पुंग तरेत खोंजेल नाचोमदा ताहनजगनी मतम इसै सिंग ख्वाइराकपुम याइमबी देबी नसक प नोट फंबिगनी पुंग तरेत मिनिट निफु पुंग तरेत मिनिट यांखै मंगा चतप मतमदा टेकचम गंभीर सिंग न खोंग बासी ताहनजगनी मतम इसै सिंग लांथोकजगनी पुंग निपाल मिनिट निफु पुंग मापल ताब मतमदा फिल्म इसै सिंग फंबिगनी अयुकी पुंग मापल मखाई ताब मतमदा संदुकजगनी ngaikho takhisi तखेल मयुम तखेल लंबम फ्रांको सिंग अमदी युमनाम अनुराधा देवी अनिगी मतम इसै सिंग संदुकतुन ताहनजगनी अयुकी पुंग तरा पुंग तरा नुमिजों पुंग तरा निथोई ताब मतमदा कंगला चैनल की अनिसुब थौरम परेंग संदुक पहुजगनी थौरम परेंग असे की पुंग तरा निथोई मिनिट तरा चतप मतमदा एनसीआरटी की तेंगमांग लोइनन संदुक चब थौरम उमंग फंगबिगनी साइंस मैगजीन लांथोकजगनी पुंग तरा निथोई मिनिट निफु थौरम लांथोक पिगदबा संगीता नमिराकपम पुथोकप रायचंद्र सिंथाम वाचस्पति मयूम नवचंद्र शर्मना लीबा रामायण की वारी थमजरी नुथिल की पुंग अमा मिनिट तरा पुंग अमा मिनिट निफु चतप मतम संदुकजगनी वेस्टर्न म्यूजिक फौज की थौरम फंबिगनी नुथिल की पुंग अनी मखाई पुंग अहुम ताब मतम संदुकजगनी चिंगलोन की सैरोल थौरम असिदा अचोन सरतु अमदी कांगबू की कोम इसै लोइनना दोनजम लुंगलाई अमदी कांगबू की कोइरेंग मतम इसै मथंग मथंग ताहनजगनी मार की थौरम संदुकजगनी पुंग अहुम मखाई थौरम असिदा मरसी ललुमपुई अमदी कांगबू की इसै थामजरी पुंग अहुम मिनिट यांखै पाइते की थौरमदा के थांखन लियान अमदी कांगबू की इसै ताहनजगनी थादौगी थौरम संदुकजगनी पुंग मरी मिनिट तरा थौरम सिदा किमनै नेंग अमदी कांगबू की मतम इसै फंबिगनी पुंग मरी मिनिट निफु पौमाई की थौरमदा एन जी लोसी अमदी कांगबू की इसै ताहनजगनी पुंग मंगा संदुकजगनी कबुई की थौरम थौरम असिदा अदोमना खनबिरकप कबुई लाइसोल इसै सिंग फंबिगनी माउगी थौरम संदुकतुन ताहनजगनी पुंग मंगा मिनिट कुन थौरम असिदा अदोमना खनबिरकप माउ लाइसोल इसै सिंग संदुकजगनी पुंग मंगा मिनिट निफु चतप मतमदा फंबिगनी तांखुल की थौरम थौरम असिदा थोत्रै सो कैसिंग अमदी कांगबू की मतम इसै फंबिगनी मणिपुरी फिल्म इसै सिंग लांथोकजगनी नुमिदांग वैरम पुंग तरुक मिनिट तरा मंगा पुंग तरुक मिनिट निफु चतप मतमदा संदुकजगनी खुंगंग की थौरम थौरम असे की अहानबदा हुइनिंग सुम्बम मंदाकिनी देवी की खुनुंग इसै थामजरी अरोइबदा याइफयुम्बा लीलादा खुच्छा तरा सिना अतै पाइनिंद्रे फंबिगनी अयिबा मुतुआ तोंबा पुथोकपदा तेंगमांगबा हेमचान निंथौजम अमदी पुथोकपा थोकजोम रेनुबला था असिगी इसै थामजरी पुंग तरेत मिनिट निफु मंगा सैसकपा राजकुमार सत्यदित्ता सैरेंगबा अहिबम कृतमला सिंह पुथोकपा हैक्रुजम देवेंद्रा फिल्म इसै सिंह अमुक हन्ना लांथोकतुन ताहनजगनी नुमिदांगकी पुंग तरेत मिनिट यांखै पुंग निपाल ताब मतमदा फंबिगनी रेडियो लीला कोन नहाइगे लीलागी अरोइब सरुक सानबिगदबा हिरामई कल्चरल एकेडमी नहारोलगी खोंजेल छंदुकजगनी पुंग मंगा मखाई नहारोलगी खोंजेल छंदुकजगनी पुंग निपाल मखाई पुंग मापुल मिनिट तरा मंगा चतप मतमदा हुइनिंग सुम्बम मंदाकिनी देवी ने सकप खुनुंग इसै अमुक हन्ना थामजरी मणिपुरी फिल्म इसै सिंग लांथोकजगनी पुंग तरा आकाशवाणी इम्फाल हौजिक इंग्राजी द पाव फंबिरगनी।

जी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को

तभी रिवर्स आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चैनल तक ने चैनल हौजिक लाथोरी मतमी खुदल की अहनबदा तभी नोमाइम पहारी न सक नवकुमार अंगोम सैरेंब थेनरमदब फरमी नंगा नक्नरमदब फरमी हेना।

0: रस्म आगे में रखते सुमसी जगे
1: लाओ ने थेंग्रे परपत लाओ ने नंगो ये तंदे मांदे तौनो नु थेंग्रे हाइमी होरेन युम योरगा हाइ क्रु सु पिजेनी सजिक आओ बसु पुपु ने पिजेनी नमादो करीम तचार मरो आई कोई लापरी एंग दुन लेरो मनी
0: पुपु से आई कोई बुदी नुंग दी नुंग शिजानी को अदुगा कई गिनो मान आई कोई बु कदाई देनो मतम निहारी शिबो
1: ला ला ला तो आई न हाई दुनी दो लंगलें तोम भी नमा से आई कोई बु एंग दुन लेरे से आम कोंग लेपम कंग द्रमाले पर पप्चसी लाओ ने नंबो मीन आई बुलक न बने सु महा वेरो बनी सजी लोईबा हाई दना ला ला ला ला तो नमा से करीम ते साद्रे दने से आई कोई लाग पर ये बता से से उसुक सी द अमुक पुन बिरगे को सजिक अनोपा आओ याम ले रे से नबुक थन हचारो से पुपु थब इंखां खरा तो रुखीगे को
2: करी की नो अशुक कोई रही शिवो भी मा
0: अदु बुरो इमा आई ने पुपु न थोड़ी था दो इंगे द ना थो ग कन न चेलुरी बा
2: इमा
0: इमा मची दी पुपु से याम न कपी बो
2: नशी नो मनी नी से इमा शु नंग पुपु न तुमिन तुमिन कप दो उई इमा शु याम नुआई ते
0: इमा नंग शु मुकप बुरो पुपु सुनंग सु पंकप तक कपी करी तौरगे हायो बा
2: पुपु नने आइ खोइ बु आइ खोइ गि मरु मपांग याम न लै बा मफम ममद थम नि हाय हे तु कि नु हाय तदन हि माशु तो मिन कबली बने
0: इमा आइ दि चलो छु च चलो हाय सिनि
2: आइ सु च निंद्रि बनि ने बे मा अतु बने ताइबंग मीगा एक होए गले मिनाऊ है बजी तम दा बने ना एक होए चट पता बने
0: अ दो रसो ऐ जी चट पंगा मुआई सिनी सुचा चलो इको

ताबिरे कामिंग मेघा की खोंजल दा एल श्याम सुंदर ने सेरिंगबा मतमी सेयमा आकाशवाणी इम्फाल हौजुग अमुक लांथोक चरी मणिपुरी फिल्मी सेसिंग मथंग मथंग ओइना खुदोल गे आहन बदा तामिनासी उ थंबाल फिल्म दगे मंदाकिनी की खोंजल दा राजेनिंग कोपम ने सेरिंगबा सोरी संजमना सेरांगबा इसेई।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानिए कि यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कवि

0: कहाँ से करें शुरुआत?
1: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
0: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
1: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
0: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
1: जी,
0: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
1: जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे।
0: जी,
1: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
0: जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर।
1: जी,
0: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी?
1: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियां हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
0: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
1: जी,
0: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
1: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
0: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
1: जी,
0: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
1: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
0: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
0: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे

0: होते हैं, उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
1: यस मैम।
0: वाह क्या बात है
2: मैम।
0: हाँ बेटी,
2: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
0: बिल्कुल कहा।
2: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
0: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
2: जी पहाड़ी।
3: अरे वाह। अच्छा लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
0: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
1: यस मैम।
0: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
0: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
0: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
3: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: बिल्कुल जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
2: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: जी मैम।
2: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
2: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली

0: है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे
1: अच्छा।
0: जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
1: जी।
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
5: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
4: जंगल के साथी।
6: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
7: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ आप सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई, एक हिरन, एक हिरन भाई, एक हिरन, एक हिरन भाई, एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई, एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई, एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई, एक हिरन।
1: दादी माँ, दादी माँ, क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई, एक खरगोश, एक खरगोश भाई, एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं।

0: रंजी क्यों, लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा? क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
1: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
0: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
2: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
2: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
2: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
0: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
2: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
5: जगबंधु,
4: चेतना
5: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: उमंग अदोमना थोरम ताविरी बसे कस्बानी इम्फाल की कंगला चैनल दगिनी चैनल असदा हुजी का मुक ताविरसी साइंस मैगजीन थोरम लांथोक पिरी बी संगीता नामै राखपम थोरम पुथोकपा रायचंद चिंगथाम हौजिक ताविरसी साइंस मैगजीन।
8: लांथोक चरी Science Magazine. Nasigi thorum da thamzari. Khutsem na miyoibigi anobu unsang sem sarakpa haibu hiram sida. Sweden da laiba Umeå University ge Department of Medical and Translational Biology da postdoctoral scientist oiriba Dr. Asang Luang laiba ga ekwegi mihod right gender jingthangu unadunu wari saba.
9: ngasi mu puduna luxury science magazine khusem na myu bigi unsa sem sarak pa habi hiram sida khana na nena ba akashvani phal gi studio da lingsin duna lebira ba dr asang luang laibabu anu mokta da ikai khamna jabu loina na tram nok chiri
10: ta ka chari ta bi riba pai puna ma pu su ko no na koram jari
9: dr asang myu bigi hona jaman myu bigi kanglon sida thijin humjin badagi ngasi bokta lak pasina aku yam na chokhot pa tha ta aku ni leiraba matam hajaba tare go masida makhal makha gi thijin humjin ba sina ibena hek pamba makai de puna ba khotnari basi gi marak sida miwebigi masak mu lepi ba miwebigi unsa si ju amane aduna unsa si ngasi ekhu gi khanda gadri ba maruwei ba hiram maruwei ba wahai maruwei ba key point de yori ba khusim na miwebigi unsa sem sarak pani ana unsa si sem sarak ba haibadi artificial man made skin si hauji phoba mangon da sem sara ise world gi oina malem gi mafam kaya da yam paksana miwebigi 50% ma yogdraga su part karada haijabatariko khutta khongda maida degi ekwegi haksangda skin gi anabagi leiramba singse khara khajik semdokpa sadokpa nasi mayampumna munaikhuina tanare khangnare aduna hujiksi malemgi thakta manmat natraga artificial skin si semgalakpada natraga madu implant obuda karamba thakta leiri na haibudu wahudu oina kitang thambi
10: funny artificial skin se khoina sem sabase skin asi dabu body da wide gi largest organ in hainari ni degi asoka pandang da skin dan ihan hana thengnari ni aduna ngasai gi treatment si focus si hana skin ne gi dum hore go koi gi soka pandangan ba organ ma su oibani na adagi le na tena me am su le san na hawe da diabetes ka narga di skin si heal tawong am da ba adagi sam na hawe da mai ke ta ki burn patients kumba adam moi gi demo extensive damage la ko pa se naturally bodies ina heal tawong am ba capacity le ta ba haitar achi gumba si da artificial need am lai artificial need se koi na laboratory da ki patients da gi cell low bani ngrena tragana to pa biomaterials na to pa category am lai certain materials hai tar moi se natural body gi healing ability si promote to biwa ada si gi biomaterials ga plus cells ga combine to organ na mo hoina lab si ta moi se culture to organ yam na extensively damaged or skin gum se hoina masagi healing to bung am jadra ba sing se sumaina hoina artificial hoina lab to saraga implant to ba sumaina lazeri si bogi di eduga ato pa angle lamana hojik se nga sagi skin se artificially sari ba skin sing se drug testing ba adagi atopa aging studies bo oiro adagi uv damage adagi bo oiro adagi natra kana hoigi inflammation natra ga hoigi irritation gumba si gumba gi studies ke su in vitro models ana yam si gi angle study jam kan to jari hai tar adugu masimak na hoi is artificial skin is subsana skin na ma subsana lai hai de na chete yam na wali sim ga saka ka do ba adugu certain up to certain extent yam na lai ba chaw chaw ba medical companies sing sina adum si gi sang si bo de hoi na thari ba drug si gi model sinaraga evaluate to yare haibagi jang de bogde dikum lainara ba aduga chapchana masina skin 100% human skin haibati nasadri aduna koi na hai matam da human skin equivalence na hai hse yana ana tamna matam gi advancement gi matung gi naso de gi khulai nong lai develop to matung gi naso ada understanding of stem cell biology hai tare simyam si incorporate to raga koi gi sum meam si more closing the gap hai tare adu minus sum tamtam na advancement sum lai
9: buziki koi na khanagadri topic si koi artificial smart skin simi bigi khusim gi anobu skin si masi sem sarak pada ngasagi dok live na so hybrid pa component mayam ma changba de gi cell tissue sing engineering gi mayam si sangba siga koi gi gen editing ga na ga hainari ba makoi siga si yam nak na bra na traga masi na pra khena bra kamai do
10: gen editing si cd si nai aduga masi kai gi no da skin na focus or na skin si de lai ba cells ni jam very abundant aduga hoi na sana ipa season ihana thoki skin gi fibroblast ke tawag nga sai ke cocktail of combination of by transcription factors and hai si je induced of lagama si ipsc is the induced pluripotent stem cells and olaline and nga sai ke skin cells si magi fibroblast and am dominant over and cell population se masi hoi gi masa ge certain stemness la si ain chan thing ne jer pa ai experience se jo ain some thing ne jer pa hai ta masa certain ke hai ta plasticity hai ta ha dum to per cell type ki da ka dum gen sto bung am bagi capacity ka dum lai jai masa gi inherent oina
9: buziki inherent oina laiba tichin humjin bu da phangyen haise masi akoi death skin cell sing se amu hohon bagi matho tarak bagi mong da khoin research tok debi da artificial made when skin se sem e se masi gi karam na hena wetes laibe da gino augment made artificial skin se sem e se hadi that skin se adubak akoi anong ba khuju khlai anong ba technology mayama ma laigre tissue culture tissue engineering gi de gi genetics gi bioengineering gi mayama ma technique mayama ma sinar kanda akoi that cell sing se skin gi maru ina ko madu regrowth of muhta madu artificial med skin jo ina mayam na focus to easy masikari gine na lobuya
10: skin je the massage self renewal every organ massage them self renewal process am disaster renewal adana massage dead cells e autophagy ni kangde massage rane do ga no over cells in the magi repopulate to ga certain magi when a niche and high see is the massage cues signals in the phanga kan da ma se ai si thabak tok do ni na tok tok jara ga leje gi do ne ba skin zu mak ngai ba adu maru ina ga sai ge artificial of the light is the diverse over factors may am like sai ethical consideration animal uses in the handarak na ba animal test handarak na ba adagi amaron da su nga sai gi ai ha je ki ba asok apan sai gi treatment massage healing abilities leje doctor ba
9: adu le doctor ba
10: si ma me adagi when skin grafting and high is mi ngon da gi low na te na ban ko autologous grafting ne autologous size isa gi atop body pa am da gi atop asok pa da hab sin jab ne autologous grafting je gold standard and high ko yu je terminology is the gold standard ha dishi da gi hena pa ba le train adu long to say ama low ima pa da gi adu mo so ga le hob de ne sam na ha ga de long to ba po to adu kai ga ma da mi do ho gi na ye le jab ma sa gi body gi health wise chon jab ha ta na drugs medical conditions le jab or ga that is not feasible yam na adu di conditions ma am la ya da ba gi ana nga sa gi artificial cells artificially ko na design to bung ma ga di adu ko ma na bypass to ba gi ko dong jab la ya na adu me ama ma importance da le na tham ja gi
9: huziki habire ba ko gold standard and habire ba ko gi aksa gi part ama de gi lotho ga part ama da na pa kan da ama da le mi ba ko gi cell sing do ama ga ma ga pa phong na hal ga mu regrowth ro pani adama si podi gi aksa ngi bi gi part sing de so adu ma adu tong ne adana mi bi khusim gi na sara ibe skin si da karam karam ba technology ha je ba tare ko apart from 3D bioprinting ama tai adu sinata ba ate te dikari kari le ri tu su tang tham bi ba
10: me am na khoi ta ma na sinna ba se ai sa gi PhD project so to observe se when a tree is scaffold on that okay collagen is a fibrous protein akoi na samjarak pada I PhD experience so ina okay artificial skin je same bagi any artificial skin address to put tissue sudum yai ko ala quite common in the scene of say when you 3D scaffold on live lies the one freeze drying the one freeze dry the organ as spoons ke mong the structure ma when create to sila sila cells in the when eating to organ populate the whole laga cells whole laga aduda ma over time ma the culture to the quarter ma ma jin ja ki jan ko jat organ ma jin mature ko den adu ma na ho gi maturation jin la ang matam da ma gi dum pui ra ga di ma gi sudden ma sak cha dum man ju ma le adu ga si gum ba se ne ho na I han han so common ni quite common na sin da se na dragon na hydrogel na cell si hydrogel gel hai ta gel gum ni adu ga ma je sudden temperature gum ba da na traga ph gum ba da base da organ ma je solidify to ba na cell si je ki gel si da incorporate to ra ga ma se dum adu ma na dum culture to bi ba si ma le re adu ga sa gi ahum su ba da quite gi amna hoje hot topic in the layer ba hai ta china kanon na 3d bioprinting ga 3d bioprinting si gi na mo hydrogel si gi type de di oi de ni adu ga ma gi na kita ga mo mai complexity kha lai re technicalities da hai de sin da riba material ji print to ba ya bo oi de ni adu ga advantages mai andi lai
9: ah hai de ga sai print to means implant to gu duri ba sem ga la ku duri ba mi ma sa du gi mangon da hapa matam da ma sak se yam na man na ba adum na kan da lo bu gi mong da na natra a khoi habili cha si da sing ma tang da ina dr live da khang jeningi se thamjeningi se khujik se mayam na 3d bioprinting se machine ano makhal gi skin sempa khoi skin creation to signa machine khoi de hen na phar ba khoi de hen na sa phar ba breakthrough ni na makha mayam na scientist sing tham me bu aduna khoi gi 3d bioprinting se ma gi working principle ma se kam kam da develop to ino adu ga ma se na mi amada ngasa gi implant to matam da kari kari changi adu ga khoi na semgal liba sagal liba khoi gi model sing se mi amade adum heta adaptability dang adum hap da anum heta mak yara bra ai di ma gi question of koi allergy gi thop gi khop gi sana da ba gi ka shu lai ta bra si gi matang sablap na kitam maruk chum na tham ba
10: 3d bioprinting se breakthrough na high se hoi gi ngasa gi ꯃꯦꯁꯤꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯚꯦꯔꯤ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯀꯨꯝꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯚꯦꯁꯦꯜꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯤꯒꯦꯁ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯁꯨ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡꯗ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯚꯦꯁꯦꯜꯁꯦ ꯄꯔꯐ꯭ꯌꯨꯖꯦꯕꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯔꯐ꯭ꯌꯨꯖꯦꯕꯜ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯚꯦꯁꯦꯜꯁ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯕꯤꯒꯦꯁ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯅꯦꯕ ꯋꯤꯠ ꯗ ꯍꯦꯜꯞ ꯑꯣꯐ 3D ꯕꯥꯏꯑꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯣꯖꯜ ꯀꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯣꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯖꯦꯛ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯟꯁ ꯐ꯭ꯌꯨ ꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦꯗ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯟꯁ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯆꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯗꯨ ꯁꯦꯜꯗꯨꯒ ꯀꯝꯄꯦꯇꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁꯦꯜꯗꯨ ꯍꯤꯡꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯁꯦꯜꯒꯗꯤ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯇꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯦꯌꯔꯁꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯁꯦ ꯂꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯦꯌꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯦꯌꯔꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯐꯦꯠ ꯂꯦꯌꯔꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯐꯦꯠ ꯂꯦꯌꯔꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯊꯪꯗ ꯗꯔꯃꯦꯜ ꯂꯦꯌꯔꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯗꯔꯃꯦꯜ ꯂꯦꯌꯔꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯄꯤꯗꯔꯃꯦꯜ ꯂꯦꯌꯔꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯁꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯁꯦꯜ ꯇꯥꯏꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯕ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪꯗꯨꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯦꯌꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃꯊꯪ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯊꯔꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯄꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯇꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯍꯦꯟꯗꯂꯤꯡ ꯋꯥꯔꯛ ꯂꯦꯕꯔꯗꯁꯨ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ
9: ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯂꯥꯏꯕꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯠ ꯂꯦꯌꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯁꯤ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯗ ꯁꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯟꯊꯣꯛ ꯏꯟꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯤꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 3D ꯕꯥꯏꯑꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯦꯌꯔꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ
10: ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯂꯦꯌꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯔꯃꯦꯜ ꯂꯦꯌꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯎꯖꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯄꯤꯗꯔꯃꯦꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯔꯃꯦꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯄꯣꯗꯔꯃꯦꯜ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯦ ꯗꯔꯃꯦꯜꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄꯤꯗꯔꯃꯦꯜ ꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯃꯔꯁꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯚꯥꯏꯂꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯗꯤ 3D ꯕꯥꯏꯑꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ ꯅꯠꯆꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯜꯆꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯇ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯐꯪꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯔꯃꯦꯜ ꯂꯦꯌꯔꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯦꯄꯤꯗꯔꯃꯦꯜꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯅꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗ ꯑꯩ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯁꯠ ꯗꯣꯛꯇ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯤꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯄꯣꯗꯔꯃꯦꯜꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ
9: ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯁꯦ
10: ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯐꯦꯇꯤ ꯂꯦꯌꯔꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯁꯦꯜ ꯁꯤꯅꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯁꯦꯜ ꯑꯁꯦ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯕ꯭ꯔꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯔꯃꯦꯜ ꯂꯦꯌꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯏꯐꯦꯛ ꯇꯧꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛꯁꯦ 3D ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯤꯃꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯕꯗ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯐꯥꯏꯕ꯭ꯔꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯁꯤꯇꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯖꯩꯌꯦꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯁꯔꯇꯦꯟ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜꯁ ꯃꯥꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗ ꯃꯥ ꯁꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯇꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯂꯦꯌꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯄꯣꯗꯔꯃꯤꯁ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯧꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 3D ꯕꯥꯏꯑꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡꯁꯤꯗ
9: ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 3D ꯕꯥꯏꯑꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯁꯦ ꯇꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯅꯦꯕ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 3D ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯦꯆꯤꯟꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯣꯖꯜꯁ ꯌꯥꯝ ꯑꯄꯤꯛꯄꯗꯨꯗ ꯃꯣꯔ ꯑꯣꯔ ꯂꯦꯁ 100%ꯁꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯒꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯥꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯊꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ ꯅꯨꯡꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯃꯦꯆꯤꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯇꯣꯏꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯦꯌꯔ ꯕꯥꯏ ꯂꯦꯌꯔꯗꯨ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ

विपरप्रियङ्गधरमिकं राजेन्द्रौशैतसण्डो दशरथतनयं श्यामलङ्गशान्तमूर्ति वन्दे लोकभिरामो रघुकुलतिलकं राघवो रावणारी पङ्गो रापरमहतीयपरमहण्डं मूरखबिलारथविद्भवे यत्कृपालये समात्रेणो वन्दे त्वं गुरुमीश्वर सदाशिवनहाय ताव प्रिय भवानी दुर्गे आमृता परमा पूरंग रामायण कामधेनु सुरतीय गणकृत वर्षो वामलिकी दद्दुहा अतीवर रुचि रमे तर रामायण पुराणो पिबती पिबती मुग्धा कोटि माखजो मिष्ठा अनागत पुराण रामायण कामधेनु ऐन कवि सन्विगिमसक ओइरे सुरता ओइरिव पुनमकसिन सना उमसागिमसक ओइवा बेल असरा गुरुदेवा संगोम सुम्बगिमसक ओइवा बामलिकी गुरुदेवन संगोम सुम्बगिमसक ओइवा अलुगुम्बा अनागत पुराण

जो सत्पा रावण तपैसा तौबा अरावोन हिंसा बगे वरम कुंभकर्ण की मरम मयाम पुन मगसे मसंग मसंग अगस्त ना असित श्री राम की मफम मदो द श्री राम की मफम द थवल लपा मथम मथम रावण दिग्विजोई सत्पा ओ मयाम पुन मगसे अगस्त गुरुदेव न मथम मथम असित दरबार अजुद मखाता न खाई लपा दुर्गा အစင်းမနောဝန္ဒရာလာဘောနာအောမာလီလေးပွားကတူတာဒိကဘီဂျိုစတ်ပါအမစင်းမရမစီယာတာရိုဒူတာအရာဘောနဒိကဘီဂျိုစတ်ပါဘာလီနင်းထောဂီမဖမ်ဒိကဘီဂျိုစတ်ပဂီအပရစံဒဆာပိုင်ရှားဝေကေဆရဟာဘက်တီလေးနဆောဘောလောကိုဒူတာအရာဘောပဖုံကရာတိကပြိုးချလို့ရအာရာဘုန်စင်္ဃာစွန်မထကတုတဖမဲရကအိယစီယာဆရကဒုံဘုန်တဝငမရာဘုန်နီကိုလိုက်ကူတီကုထောဟုံတို့အပမန်ပြိဘငမဘလိုက်ကူတီကုထောဟုံတို့ဘဒုံဘုန်တဝငမဘရာဘုန်အိနီကိုဝမောပဒဘီဖငဘရာဘုန်အိနီအိကြီးစက်တီပုရကဘုခန်ဟန်ဘိုင်မဆာAigi khetri, aigi ha, ninthau ama oibagi, aigi dhanmani, aigi punamakasi khangan gani, aigi sakti, laipak punamak khangan gani, aigi bijoi satkani, aigana. Arabo na haibu ohoi, aigi skindhara dik bijoi satkani, sajon tau, arabo na laulapani. Arabo na ki skindhara dik bijoi satkani, eta yaapi hibadegi patra mantri anga mathau mayam punamakadra haibu ohoi, lankesora maharaja.ओ किस किन दादा दिख भी जो इसत का नहीं है ये दिन मयाम पुन मग से एक से हम साधना ओ दिख भी जो ये मरम मयाम पुन मग से एक लंगक मनी ये दुर्गा लेरी भी हिंसा बग तीन गोर मयाम पुन मग से थांग पाई घरी गदा पाई बगदा पाई घरी मुसोन पाई घरी मुदगरा पाई बमुदगरा पाई घरे अराबोन की दिख भी जो इसत पग या जात्रा की मऊंग दिख भी जो या जनन बग मरम पुन मग से लांग घर बनी अराबोन की मंगोन की नमक लभूसुंग मयाम पुन मग से यो घरी गंत स्थापोन चिंग पुन मग जो लांग घरी ओ मंगोन की पोलम मयाम पुन मग से ले घरी अराबोन कीAdik bijoy, agis gindhalas na nabagi maram masilangak pada manggon gi polam mayam puno magasi oirak pa masid jantra idle lady ba jantra mayam puno magasi rabon gi manggon gi damag katingkat narak pani pungse nagana dulot basi bangsi janjuri menjuri tal merdang abhari bhuri janana nara jantra mayam puno magasi tarang tarang hek katingkat lakmani niya mayam puno magasi gi manung de phiral idle lady ba phiral mayam puno magasi rabon gi manggol oin na bani idle phiralmayam puna magase pangti pangti hekta theka darak mani dhaja patoka rana patoka pira patoka asangba angangba memanba phiran mayam puna magase phijilla sina phiri phiri phiri phiri phiri phiri khaire ra gana bon adula jata oirak mani ne maharaja kriskinda da dik bijo isali bani adula jata oirak pa rabo kriskinda da thumi arabon ki dutsanga kana kriskinda ge singa dohara dutaHai bandur betau gara gara lagi tong hangu. Serga domon tau mengambalai koti kuntra hum doi apaman pi mengambalai koti kuntra hum doi mari makala tamba. Desa maku karapan ba umur oi berabu nengasia kisin jahat dikbi joi lagi tong hangu. Bandur betau yong rong masasa.Bali ki lady bathong sang basinga du dia nisam sam thong sang malat he maha papi hingsa ba jing ma thwai mang ning da mu la ma le ne ai da na thong ke hek hang e o du chi ga du lai da mi hai hingsa ba na thwai ye du mang ning da na ase da jik bi joi ni da lak cha ba sa ri ngu si da ta ri ba sa ru ma ru ma yam pu na ma se hingsa ba ma yam pu na ma ama maharaj bali ki ma khud pran mang ra di no is na thwai mang ning da lai ba hingsa ba saSing jawab sing ada na hey bandor beta yong nong masa nohi gumbagi ya nohi gumba na kedo jaga da bangam ngam kedo di maharaja ora bonda like kuti kontra hom do idene lady ba like kuti kontra hom do mai ising sit akas mai ising nong sit nandi bhengi pa poi na khion ti thi di varatro astra baso lady ba lai mayam puna magasi wa paman pira bani o mor pada bi phanga bani lai puna magasi ra bon ni maka de lai ra bani adura bandor beta no hoya yong na umsan hoy de ke ujar ba yaga do ni ba maharaj o ji ki bi joi le nahi
노이기야 마리 하리버린 더워든 호이땀저루소 나빠한건 내 통나하래 내가 띵고온 뿌르가 통으로 나빠한건 내 통나하래 내가 아틴 뽀트걸로 있는 성전 나 토하이깐 미름기 노이 마리니 더워든무소야 얼리리버 도아리 애니애들아 마하바비 뭐 심사바 힘사바 노이요 노이고 뭐 아이코이 아이코이 레이바가시다 개도부 야로이네 노코이 나 토아이도 망하더니 노코이 나 토아이 망기애들라시네 노코는 통은 남은 팁을 아버니네 하 아이코이 발리 마하라즈도 땀무가 도리바 발리 마하라즈도 혹직 레이디네 가게 사고르다 어드르 삼무드라다 세와사키 세와사키 산자세와사키 아유키 अरे महाराज ने लाखी से नून होई सीरे दमनी सीबंग हक नाई बोई ने नून गायरो रोसलोन होई सीब थिंग सीबंग हक नाई बोई ने नून गायरो रोसलोया हिंसा अब सिंगल दुन महाराज अब मौज निंटोग ले इधर बोल दे कोई आ बराबर ने तम्मुरन निया इधर ने द्वारी सिंगल आज रा दूध सिंगल दुन लाये रेगा महाराज राबों की सोरों द भक्ति कली महाराज बुन्ना नाई कोई भक्ति का सरी मौज ये द्वारा दुन सल्ले रेगा ना नाई कोई ने दिख भी जो इला ये इधर लोग जो रूप मत तंदा Yung naong basa mahat pala erek yung naong basa mah alam na digwi joy la erek ka mama gumba yung naong basa to bu ay ngay erek hat katro ha yung naong basa mahat pala ako ito magta ay ngay erek hat katro ito sal erek ka mapum maduda nakatang ko samudra da sal erek sagur na sal halur dam niya ito Rabun yogi apa tu yobong amba Rabun ki sakti leibam matthawna leibam mapangkan kanba Rabun ni Sajidaw Hal orang si lawai dengan si lak pasi, kaki samudra ma pan sagor ma pala dulu ye tu yowie. Bali hari ba Bali sidi sam sam ba Bali nanti ni tu kah. Saugil, aida na Bali ni sor pada yudak humudra ki perimana asaubang ba Bali ni, magi anggadun yudak hum da kon mani, mami itu yudak yang kay sang ba mami adun sanggri tu yudak yang kay ni. Bali khoi na kan ba sakti si kayamu kan ye buchau brabasan na jinga dumma khut ani na ta pai re re ga ta ke ta lang khat le re ga wang bi ya bo wang na lang khat lo re re ga madu ta ra ko dumma khut na ta u e re ga san na jing bu khin mang amba adu ma bali ni samudra na kum dhare re re ga musa samudra ki iya ye dur bali gi samudra se na ma ge katit ma khong bhog lam biog bani ma khut ani ye dur tin tho khare re re ga se ra bo na ngalai hi ba samudra thing thing bang ma adu gum bali ni wang ba de ma ne le khala ba sarga mandon khet kai wang ba ma bangan kan ba sarga mar ta pa tan mo ro lohum dit tare na ba khanda ma pan na abali bu abawan bi bi ga da bali de gi he na sakti li ba bali de gi he na kan ba jagat le gi dr bani ye dur ka Pikirnya pikpada isam sampai yuwang ambak gumja dumlay bang ambak. Sarahar olah mada dumlay bang ambak. Aduh gumba Bali ni. Bali itu isam sampai yuwang ambak gimong itu dah layre re kesanjah sewaan ni. Dan nama sangkaya tu lau dan layri ni noyolan itu isal lagi. Arabu untuk para perbincang ni reka kaya adi usik kiri. Yuwang masalah mana nama suatu layre mana tu ubah dah. Hey, bandar beta yuwang besar. Nen layak dah idik bijoi lagi. Ayah sya. Lengkesor raga bol hai betul ni. Sarga do mon tau mengambil lai kuti kudra om doya bawaan pi mengamba. Aduh gimana nunggu tu do omor pada biye betul pangga raga bol hai ni. Lau. Naku tak kulai payu ayi kejoi pararu yang nasi lau lantang nasi lau. Nangal lantau mengamu ini nengal lau ayi ayi ngono sendiri ulau sarana kau bhakti kalu ramna thway kan biram kaya. Bali do. Mami tu pang dia nama sangkya adum. Lau dengan lagi, mana ngang itu ditai. Itu terusati, kahim tak tahu dengan adum lagi. Ramon lemah tenangan dia bandur beta. Macam jagat kiati, wainya power berlengke sor ramon. Ayi gumen ngang pasen nangre nala kagadu tasen dada dana. Itu terusati dana. Lain munding ngasih kangoi dada dah. Ayi dapai ni berjag kuati kemana kerap thang thang ngasih na. Nangre kata thamat. Kek ni yung mang kek terpralogi leramu aja na. Ada bol tu nek langak berdua. Durga ikan kamu bunati. Isam sam dan leram bali itu sah. Ek ni utak. Humudra lagi pahit perahit dah. Ek terpamir.
아주 라본이 뻥아 애덩아 이 떠오르 이 뭐 더우도 오버다 라본 남마지도 잉카 키버다 망각삼마도 대깔라가 이행바다 사르가 귀했다오이 어라 싸오라 아까 아이들 이거 조금 꼬르드는 레이 라본 뿡한가 그는 레이 까이노 떠오르시 보이다나 어디라고 말리가 라본가 옛날 우리 라바가로 본세야 갑리엔 묵다 왕그리니 아마 하라자 라바리기 맘마이 말리가 삭 많은 싱마 맘마이 아마 레이림니 맘마이 아두나 사라라라라라 하이젤라 에르가두까 라본기 까짓 아두다 까라 제가 분기보 알아본도 나라 마마 얘들아 분기보 되게 가라가라가라가라 헷갈 낙선기 알아본 게 안 미엘람 따기디 아주 되게 어우 말리기 마마 얘들아 다 사르가만 놀라도 나이갈 레헤레가 왕비야 보 왕래 요척장 가 얘들 당글 레헤레가 이럭 빠시 누르가 알아둔 저거기 맞다 훔내라 보올라시 마마 이어두나 아 당갈라가 이럭 빠시 마라가 두를 내리 분웅시 내버들 우우우우우우 우발로발 마야 안부나 마가시 눅시기 사우 만두나 베레베레베레베레베레베레베레베레베레 하이 사우르 사우르 우자옹 마야 안부나 마가시 마루 보아래가 땀땀 뚜레이 라본이 라본이 행사하게 된 건 가이드는 세는 거네. 라본도 술라디아만 놀라도록 우르르르 레이래. 라본이 묵었다라. 이단 피리피리피리피리 하더래. 라본, 얀망이, 얀다더래. 라본도 레이베 야벨 레이로 해라라가. 하이젤 레이래가 람무라라 삼무드라다. 짜오. 룹키보. 삼무드라 이 아이에도 됐으리리리. 룩타가래 해라라가 어라바리기 맘마이야 눈에 떠오봉가 비보 삼무드라 이루어 눈가디도 오루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루루
나라의 말이고 거기를 말하네 라고 꿀라버니 누군 뭐 말리도 마룩 암마기 마판다 마룩 암마나 하이히보고 아판마도 낫바 마탐마도다 말리가 수그리고 아니게 약간 말라할라도다 이봉오나 오기 마룸들 레이레가 나라의 말리히리 디다 띠에나 타기바 Tin gi sai na khun phang ko ma tam du da bali na hai kanaro na pang lai de ga yi mang du song thoro o hulal la na da ai go da tien tha ba kanano re mu ma si di khang moi da do ai na bali na so ba ga loi ne re ga sa ek ta lai thorak ba kan da na ba gan sa boi ba prahad dhur ba na de jugindra muni sahi kalp dhyan to bud phange ta ma da phang mangam da ba रघुकुलमणि श्री राम चंद्र की ताम लब श्री रूप दो बाली ने दर्शन तो जरक बनो रघुमणि करी बताऊ रो नाराय बाली ने गसी तो विधि शिवो करी बताऊ को गे रे राम राम ने बाली लंका के रावो ने सीता हूर ग पूरे सीता उधार के दमकता Marup amagi mapham da marup amana hai hi bawa pham ngak na boho na ghi bani. Maram puna maga sa isri naam na hai rakpa. Bali na raam raam adu ki da bakta ra de bongo. Adu ki da bakta ra de raam adu ki da bakta ra de ragu mani. Paap sin ba nanai bali wu kou bhi re ra raga. Bali sita udar tau. याथंग तुम तंग नाराय बाली दे पीवी रम्मे हरे रगा समुद्र में घूम जिंग न सोंग अंबन नाराय बाली नी नाराय बाली लंकाले बाग दुर्गे सजरगा नाराबुन महापापी ये तुम नाराय ही मिट्टे ही में ये सिर्फ पुल्लगा लंका भूख तो ऐ रगा मतंग मखा ओल रगा समुद्र न चाम थादरा मगा लंका वो फुल्लो इन मांगल लगा जगन मात हो इवा वो पूरा गा इवो की सोरों ने कच्चा बगम बनाई बाली नी दे बगो अदुम नदी नाई बाली द कृपा पी ने भी दे बगो नाई बाली जी वो इन पुप की बही आले सर्ग मार्ग पात आल मरो लोहम दीप तरियत न बखंडा मापन्ना नाई बाली वो प्राणलो बिगड़ दबा नाई आ बाली वो गंभीर दबा नहीं नाराय बाली न मतम पुन मक्ता नाराय बाली की अरु यु मतम दा इबो नंगी श्री रूप अदु तंग दर्शन फंग जरगा इबो नंगी ताल रब श्री चोरोल अदु तंग फंग जरगा नाराय बाली प्राण भाज बपी दमी हुए जर नाराय बाली न मतम पुन मक्ते इबो नंगी दाबु सोजर पा भगत बसोन इबो नंगी भक्त न गुदम सन्मनी नाराय बाली की निंग जब भक्ति ये तो दिपी भी दे नहीं इबो नंगे नाराय यही बाग दिल भी रख बने तबर नेरा नाराय बाली की दमक तेलिंग भी रख बनी नाराय बाली की दमक तेलिंग इबो नंगे दिल भी रख बनी नाराय आसानी में ठुंग दोने बाली थारी बतेल लदुगी मई साग न खाग मंगम दे मसापु न मगद धक धक धक धक एक टन निकले ही मसापु बहुमांग ने पुंगु पेतु लुपाई परिधी न ताम में कहा यद न बाली दागी बाली मसानी पाह अंगदा अंगद सेंज ले ही बाली न अंगद ये नगई मागी और बुंगो अंगदा अंगदा इपादी आई बंगो रघुनाथ की सेवा में तो लोग में तो बंगो में मुझे दौड़े ना को बंगो नंगने आई बंगो रघुनाथ की सेवा में तो लोग में तो रो को इपाहा हाथ की बनी है इधर नंगे ना पुनी ना तोड़े हेक निंगो कमी कर दूँगा मामा माथा खाओ बाली ना बाई को उसाब पापू के दबनी को मसाद सिनरक बा बंगो नाराई साब लुक्सन भी उको नाराई नाराई ने इसाब वाई भी मोगी सुरों ने कसरम के कोई जना मसाज सिनरमी बाली और वो हाई धगी बधगी थरो थरो थरो थरो उन जल्ले रे रे का बाली मिलोनी देगी प्रेम धाब तुम तुम सिद्धे रे का राम राम राम राम हवो राम राम राम राम हवो राम राम राम राम हवो इब मोगी नावाम बट सोले रे का नशीर राम की तंगां तंगां लब सर डडी नो तुरे बाली बुखड़ का धोए रे का बुमो नाराय बाली जी वो इन पोप की बही आले है जना बाली श्री राम की सर डडी नो तुरे
मुक्कदु कातुग चुप सुरूप सुरूप चुप पहरे हर का बगो नाराई बाली जी वो इन पुक पके भाई आले सीत वो भंगी आई बगी न बगते दर हाई बाली न बतम पुक में बगते ही वो अने की नाम तब काउ जे दबानी बाली बाली की भक्ति बाली की प्रेम बाली की श्रद्धा उन पुत्र श्री राम अंग ठक ठक ठक ठक ठक लगी श्री राम रिधि पुह रखते बाली लगी भक्ति लगी प्रेम दर राम भाई मुकाम भाई याद रहे ले राम भाई मुकाम दुगल काग वाई नहीं बनो ने बाली आये मेरे को श्री राम दे श्री हस्तना बाली जी का सिर अदुद था ये तकरी पाप ही नहीं ज्योति अमोई बाली की पंच प्राण मंगा पाई खट्टा ना असिरा दिए वलो बैकुंत फंगी रावण बाली की मुखुत अपमान फंगी सिगी मखाद लाकदबा अप्रसंगा आरावण ना जमाल वही दे सलकदब मखागी प्रसंग सिद्धि सरस्वती की कृपा लय बमराई बुक भबो राम नमुठवन फंगबो ओइसलो नानाये गिधि मतांग सिद्धांति मोई जगे सदन बद भवि पुन मुपुका पिरगा रिधि सुत्त कारुण गिरा बक्ता सीताराम है बनावामृत तो कौविधन मतम पुनमक्त विश्राम लोभी के दबोई राम राम राम, राम।

रामायण की वारी दता विरे रावण केस के नादा दिग्विजय चटपा नसे की वारी लिवि किबा बाचस्पति मयूम नवचंद्र शर्मा अदोन थौरम ताविरी बसे आकाशवाणी इम्फाल दनी हौजे न्याकी मतुंगदा वेस्टर्न म्यूजिक की थौरम फंगबिरगनी।

western music ki thoram ta vire adomna thoram ta vire bas te kasbani imphal de gene hauje ka muk ta vire se saknai ra bas tingi wari paring asida ngasi amu pujarali chiza hospitals and research institute private limited ke founder cum managing director dr kundongbam palin miyamna dr palin hairga henna khangna basini dr palin imphal ki ning tem bukri mapal da poi class 3 dagi 8 fawba wankhai da tamlaki higher secondary na johnston higher secondary school da tamlaki pre medical na dm college da tamlaki mbbs na regional medical center rmc haujik na regional institute of medical sciences imphal da tamlaki mbbs pass tawraba matung da rims da english thing amaga chamapan marifu dagi english thing amaga chamapan marifu ni thoi fawba register oina thabak pukhi tawingumasung pgi chandigarh da general surgery da ms tamnabagi damakta rims thadokhi english singa maga chamapan marifu marida rims ki plastic surgery department da register oina amuk hanna thabak pukhi english singa maga chamapan marifu tarada pgi chandigarh da mci plastic surgery tamnabachakhi masigi matungda रिम्स की प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट दा असिस्टेंट प्रोफेसर ओइना प्रमोशन पीखे मफम सिदा माहना सिंथा निगाय ओइबा सर्जरी कया पांगथोके डॉक्टर पालिनना इंग्लिश सिंगा मगा चमापन मरिफु मंगा दा इम्फाल गे पौना बाजार गे फार्मेसी अमादा एटेस तौदुना ममिंग थोन दबिदा अपिकपा क्लिनिक अमा सलाइबा होरखे रिम्स रोता अमोक सिजर क्लिनिक ओइना अनालयिंग सथबा होरखे ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯆꯃꯥꯄꯟ ꯃꯔꯤꯐꯨ ꯇꯔꯥꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯃꯥꯔꯁ ꯇꯥꯡ ꯇꯔꯥꯇꯔꯨꯛꯇ ꯔꯤꯝꯁꯇꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤ ꯁꯤꯖꯔ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯁꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯆꯃꯥꯄꯟ ꯃꯔꯤꯐꯨ ꯇꯔꯥꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯇꯔꯥꯗ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯤꯍꯣꯜ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯀꯤꯍꯣꯜ ꯁꯔꯖꯔꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥ ꯑꯃ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯄꯥꯂꯤꯟꯅ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯄꯥꯂꯤꯟꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯃꯇꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯞꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯖꯔꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯡꯒꯣꯜꯗ ꯐꯪꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯕ ꯐꯃꯨꯡ ꯍꯨꯝꯐꯨ ꯃꯉꯥ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯊꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯇꯥꯡ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯔꯕ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯁꯪꯒꯥꯈꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯄꯥꯂꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯕꯣꯗꯤ ꯋꯦꯠꯀꯤ 40% ꯂꯨꯝꯕ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯉꯛꯁꯝꯒꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯃꯔ ꯑꯃ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯒꯤꯅꯤꯁ ꯋꯥꯔꯜ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯊꯝꯈꯤ ꯁꯤꯖꯔ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯇꯔꯥꯗ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯋꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝꯁꯤꯡꯕꯨ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯏꯟꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯥꯔꯀꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯇꯔꯨꯛꯇ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯁꯃꯥꯏꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯤꯟꯕꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯧ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ

0: ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯨꯡ 2:15 ꯆꯠꯂꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरो मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरो मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
2: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
1: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में हैं। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरु मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरु मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरु मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरु मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित

0: करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और IT आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फोकवोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
2: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
3: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
4: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के दो दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर प्रसारित। फौज भाइयों के मनोरंजन पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

फौज भाइयों के लिए कार्यक्रम महफिल में प्रस्तुत है कुछ गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम का ये पहला प्रदर्शन सुनिए, रितो रिबा का ये नया गीत है 2025 की, जिसमें श्रेया घोषाल भी थी और उनके साथ रितो रिबा ने इस गीत का जो आवाज़ है वो प्रदान किया। और इस गीत में नज़र आए थे ईशान खत्तर के साथ तारा सुतारिया। गीत के लेखक राणा सौटल, संगीत प्रदान किया रजत नागपाल ने और संगीत में मिश्रण प्रदान किया हनीश तनेजा ने।

फौज भाइयों के लिए कार्यक्रम का ये अगला गीत है रवि दुबे और सरगुन मेहता की। ये एल्बम है द्रिमियादा, जिसमें आवाज प्रदान किया

तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। माना तेरी सूरत की है चांदी, 100 टका बिल्लो मेरे, दिल का सोना भी खरा। ये चांद बालियां, ये अगला गीत है फौजी भाइयों के लिए आदित्य के संगीत और गीत में, और आवाज आदित्य।

रे मन, ये गीत है श्रेय घोषाल और स्वानंद किरकिरे के साथ कनिष्क सेठ की आवाजों में। गीत के लेखक स्वानंद किरकिरे और संगीतकार स्वानंद किरकिरे।

ये प्रसारण है आकाशवाणी इम्फाल के कंगला चैनल द्वारा और आप सुन रहे फौज भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में महफिल। कार्यक्रम में ये अगला गीत है पापोन की आवाज में, इशाद कामिल द्वारा ये अल्फाज और पापोन के संगीत निर्देशन में ये नया एक गजल है और गजल का नाम है यार खफा।

महफिल के कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत का ये अगली पेशकश सुनिएगा। अली सेठी और शय गिल के गायन में। गीत के लेखक हैं अली सेठी और जुल्फी, संगीतकार अब्दुल्ला सिद्दीकी और शेरी कटक।

कार्यक्रम में ये अगला गीत है एक मराठी पॉप जिसके गायक हैं संजू राठौर, और संजू राठौर के ही लेखन और संगीत निर्देशन में ये गीत है, और इस गीत के उत्पादक हैं

0: माजा किंग, ओ माजा।
1: फौज भाइयों के दैनिक कार्यक्रम के इस अंक को विराम देते हुए हमें अनुमति प्रदान करें। जय हिंद।

काय कोई न सत्तू न फौशू लंगुरग फलक पस गेम खर न सावन न भयोलक बनी दोनों याई नशी कुरो।

शास्त्रीय संगीत की खुदौल द उस्ताद बरे गुलाम मलिक खान सप खयाल राग मलकाउं स्ताबीरे विलंबित एकताल द्रुत तीन ताल आकाशवाणी इम्फाल हौजी संदोख सरी अदोम खनबे फिल्म सही मथंग मथंग अहानब ताबी सी अखुनब मनी फिल्म दगी सदानंद मदि रोशीबिना अनिपुन समीनबे सही सैरेंब रोमी मैतई सैरंग टोंब थांगजम खनबीरप सिंदी लंफेल सुपर मार्केट तगी इंगोचा केथबी श्यामो नीलचंद्र केशो मदी थानिल

हमें पता है कि आप भी हमें बहुत प्यार करते हैं और हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम हर श्रृंगार। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ रितिका। उन्नीस सौ 91 में आई फिल्म साजन का आपने ये गीत सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज में, और नदीम श्रवण का संगीत और इस गीत को लिखा समीर ने। कहते हैं कि जब किसी के लिए दिल में सच्ची मोहब्बत हो जाए तो हर धड़कन उसी का नाम लेने लगता है। ये तो कहीं ना कहीं हम सभी ने किसी न किसी मोड़ पर महसूस किया होगा। कुछ रिश्तों को इजहार की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आंखें ही दिल का हाल कह देती हैं।

आपको मजा आ रहा है? भाई मुझे तो बहुत आ रहा है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीत अपने श्रोताओं के लिए मैं लेकर आई हूँ और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये गीत आपने सुना 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक का। संगीत से सजाया इस गीत को आनंद मिलिंद ने और इस गीत को आवाज दी अलका याग्निक और उदित नारायण ने और इस गीत को कलमबद्ध किया मजरू सुल्तानपुरी ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

सलमान खान और चांदनी पर फिल्माया ये गीत आपने सुना फिल्म सनम बेवफा से। लता मंगेशकर की आवाज में लता मंगेशकर और विपिन सचदेव की आवाज में महेश किशोर का संगीत और इस गीत को लिखा सावन कुमार ने।

तो दोस्तों, हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। 11:10 पर समय रहेगा मार्केट मंत्रा का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जल डमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, The news read by Reshma Tiwari. New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
1: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al-Bahyan and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. In a major step towards expanding bilateral trade and investment engagement, the first round of negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement, FTA, concluded successfully. The negotiations were held in virtual mode last week. The Commerce and Industry Ministry said both sides made substantive progress across the negotiating tracks and reached broad convergence on several issues. The Election Commission has extended the schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. According to the Commission's revised schedule, the booth-level officers or BLOs will now visit house-to-house in both the states till the 24th of this month, which was earlier scheduled till the 14th of July. It added that the draft electoral roll will be published on the 31st of this month. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the event. Speaking to media, Mr. Singh said, Bharat Tex is the vision of the Prime Minister. He said it is now an international event and every year there has been an increase of exhibitors, buyers, sellers and visitors. The minister said MSMEs and entrepreneurs are also attending the Bharat Tex. He said free trade agreements with different countries are benefiting the textiles sector. The Enforcement Directorate, ED, has arrested a private software and fintech firm chairman in connection with the alleged Mahadev online betting app linked money laundering case. The agency had recently attached assets worth over 940 crore belonging to the chairman, his family members and entities allegedly owned and controlled by him. In cricket, chasing a target of 259 runs set by England, India were 239 for 4 in 42 overs in the first of the three-match ODI series at Edgbaston, Birmingham, when reports last came in. Earlier, electing to bat first, England were all out for 258 runs in 47.5 overs. In FIFA World Cup, France will take on Spain in the first semi-final at Dallas Stadium in Texas, US tonight. And that is the end of this news bulletin.
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. श्रोताओं, बाजार विशेष की खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे समक्ष आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार, गुड इवनिंग अर्जुन.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस डिक्लाइन. सेंसेक्स फॉल्स ओवर 550 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 24,052. Government releases the first index of services production for 19 subsectors and global crude oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट. सेंसेक्स 561 अंक लुढ़का. निफ्टी 24,052 पर बंद हुआ. केंद्र सरकार ने 19 सबसेक्टर के लिए सर्विस प्रोडक्शन का पहला सूचकांक जारी किया और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े.
0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, अब आइए रुक करते हैं और जानते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने, यानी कि घरेलू शेयर बाजार ने, कैसा प्रदर्शन किया. देश के प्रमुख शेयर सूचकांक 0.7% की गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 159 अंक लुढ़ककर 24,052 पर आ गया. निफ्टी के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.5% की गिरावट आई और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग 1% की गिरावट आई.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड अराउंड 0.7% लोअर टुडे. Sensex fell by 561 points to close at 77,055, while Nifty declined 159 points to settle at 24,052. In the broader market on the National Stock Exchange, the Nifty Mid-Cap 100 Index slipped 0.44%, while the Nifty Small-Cap 100 Index fell nearly 1%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई. सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में एचसीएल टेक लगभग 4.5%, इंडिगो 2.3% और बजाज फिनसर्व में 2.2% की गिरावट आई. वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो भारतीय एयरटेल 1.5% से अधिक, टीसीएस 0.8% और सनफार्मा में लगभग 0.5% की बढ़त हुई.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of the 25 sectors ended in the negative zone. Among the top losers, mid-small private banks Quality Tilt dropped 1.92%, Realty fell by 1.91% and PSU banks lost 1.79%. In contrast, utilities jumped 0.7%, metals rose by 0.63% and healthcare added 0.53%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 1,501 companies advanced, 2,737 companies declined and 195 companies remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.10 पर कारोबार कर रहा था. सिद्धार्थ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी कि हॉर्मूज का जलडमरू मध्य एक मछली के कांटे की तरह गले में फंसा हुआ है. शायद इसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि बाजार की प्रतिक्रिया इस तरह से है.
2: नहीं प्राची, आपने बिल्कुल ठीक कहा. जब से मैं कहूँगा वेस्ट एशिया क्राइसिस जो शुरू हुई, उसके बाद से जो बाज़ार में एक हम कह सकते हैं कि जो एक उथल पुथल या वॉलेटिलिटी बनी हुई है, तो वो अभी भी कायम है. और मुझे लगता है जो फिर से जो एक एग्रीमेंट हो गया था अमेरिका और ईरान के बीच, जो युद्ध विराम हुआ उसके बाद एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक एग्रीमेंट हो गया. 60 दिन का युद्ध विराम हुआ और ये हुआ कि उसके उस दौरान बातचीत करके एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा. लेकिन शायद वो सब होता उससे पहले ही फिर से एक बार जो है स्थिति खराब हो गई है और अमेरिका ने दोबारा जो है ईरान पे आक्रमण कर दिया है. और ईरान भी डटा हुआ है और ईरान ने भी, मतलब आज की डेट में अगर हम ये कहें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ये कहा है कि अब उनकी तरफ से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिलहाल बंद है. ईरान ने तो अपनी तरफ से जो है रोक लगाई दी है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि संडे के बाद से जो आवाजाही है, जो जो तेल लेके तेल के जो जहाज़ हैं या गैस या तेल के जो भी जहाज़ हैं, तकरीबन हमने देखा है एक दो ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जहां ईरान ने अटैक भी किया, उसमें कुछ भारतीय भी हताहत हुए हैं और भारत ने इस पर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। तो मुझे लगता है और वही कारण है कि जो बाज़ार पे भी ये उसका इस अनिश्चितता, इस इंस्टेबिलिटी का जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है।
1: जी सिद्धार्थ, पिछले कुछ हफ्तों में बाज़ार में हमने बढ़त देखने को मिली। अब क्योंकि माहौल थोड़ा सा अनिश्चित एक बार फिर से होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उस हवाले से क्या आज और इन बीते कुछ सत्रों में मुनाफा वसूली देखने को मिली है, क्या आज भी हमें उसका प्रभाव मुनाफा वसूली का प्रभाव देखने को मिला है?
2: नहीं, देखिए जब ऐसा पीरियड होता है तो ऑब्वियसली लोग जिसको कहते हैं ना कि अपना पैक हंटिंग, मतलब अगर जो निवेशक है उसको ऐसे मौके आते हैं जब उसको लगता है कि मैं इस लेवल पे कुछ अपना जो है प्रॉफिट जो है बुक कर लूं और आगे शायद मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दोबारा मैं बाज़ार में आऊँगा। तो शायद और बाज़ार में आप आते भी इसीलिए हैं क्योंकि हर व्यक्ति का जो निवेशक का एक एम होता है कि कहीं ना कहीं, तो वो एक कारण है। और मुझे लगता है ऐसी अनिश्चितता का जो माहौल है तो बाज़ार कहीं ना कहीं अभी ऐसा लगता है कि रेंज बाउंड हो गया। और जब से वेस्ट एशिया, चूंकि अब तकरीबन जुलाई का मिड जुलाई में है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी तय है, आप चाहे रिजर्व बैंक की तरफ से जो उनके एस्टिमेट्स हो इस साल की जो जीडीपी फोरकास्ट है उसमें भी उन्होंने भी उसको घटाया है और इन्फ्लेशन को लेके सारी दुनिया में चिंता है, तो कहीं ना कहीं वो बाज़ार में भी कहीं ना कहीं उसका असर दिख रहा है। शायद इसलिए निवेशक इस स्टेज पे उनको लगता है कि शायद इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आगे दिखे, क्योंकि आप अमेरिका में भी देखेंगे तो ये एक डर बना हुआ है कि शायद वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट्स, वहाँ की फेड रिज़र्व जब अभी इस महीने के अंत में वो बैठेगा तो शायद हो सकता है। तो इस सब का कहीं ना कहीं एक मार्केट पे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है और शायद इस वजह से निवेशक शायद थोड़ा इस समय अपना प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं।
0: Siddharth, clearly the inflationary impact was seen in the CPI figures for the month of May. Now you have the figures for the month of June. The wholesale price index figures have also been released and manufactured products are also seeing a hit in terms of a price increase. And that's clearly affecting consumers because of what's happening in the West Asia crisis. What is the strategy of the FIIs, FPIs? They've been the net sellers in the market today also to the tune of 3,062 crore rupees. DIIs once again, as it's always been the case, are holding fort, short covering 2,172 crore rupees. What would you advise a small investor in this market? Should they exit their position? Should they hold on? Because a lot of valuations which went up has suddenly come down by 20-25%, especially after Trump has reinstated the blockade on Iran and its ports, claiming that there should be a reimbursement of 20% of all cargo that is going through the Strait of Hormuz now for guarding it.
2: See, Arjun, answering your first question, what is the kind of strategy or what is the game plan by the FIIs or the FPIs? I would say, if you look FIIs and or FPIs, you may call them, they had been exiting Indian market for a long time. And as of now also, as we talk, I think they continue to be net sellers, except

0: चलो चलो घंटी बज गई, चलो चलो।
1: क्यों बिल्लू, कैसे लगा?
2: बहुत अच्छा है दुश्मन। क्या
1: अच्छा लगा ना?
0: चल चल जाओ जाओ जाओ।
1: अच्छा जी, ओह टायर पंचर हो गया।
2: पैसे निकाल।
1: पहले मेरे काले से हाथ हटा, नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
2: जा।
1: थैंक यू।
2: ए, उधार रख के जा तो रहा है, लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
1: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: आ गया? क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना आखिर ड्राइवर का ड्राइवर ही। तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक पिंचर हो गया दूसरा लगा दिया। अरे वो दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं, लेकिन तू क्या समझेगा प्यार क्या होता है?

0: क्यों फूलवती, आज टमाटर शुरू होने से पहले ही
1: रहने दो काका, रहने दो,
2: मैं बोलता हूँ। फूलमती, काका ये कहना चाहते हैं कि आज तमाशा शुरू करने से पहले ही तूने खत्म कर दिया।
3: नहीं काका जी, आज का तमाशा तो अब शुरू होने वाला है।

एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मन मीत और जो गीत अभी आपने सुना वो था फिल्म दुश्मन से लता मंगेशकर की आवाज में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में बस आज बस इतना ही। सुर भी आ चुकी है स्टूडियो में निशिगंधा लेकर, तो छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ और अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ 10वां पेयजल संवाद आयोजित किया। बैठक में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। नेपाल और भारत ने कल ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। काठमांडू में नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने भारत के ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल और अतिरिक्त विदेश सचिव मुन्नू महावर के साथ बैठक की। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और अन्य दो रूसी अंतरिक्ष यात्री कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कजाकिस्तान से सोयुज MS-29 अंतरिक्ष यान के जरिए उड़ान भरी। अनिल मेनन की ये पहली अंतरिक्ष यात्रा है। उनका ये मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम के एस्बेस्टन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अब से थोड़ी देर बाद टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Reshma Tiwari. New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi yesterday, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
1: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Albahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz yesterday. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned yesterday by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from today. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi yesterday, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. The Election Commission has extended the schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. According to the Commission's revised schedule, the booth-level officers will now visit house-to-house in both the states till the 24th of this month, which was earlier scheduled till yesterday, the 14th of July. It added that the draft electoral roll will be published on the 31st of this month. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the event. Speaking to media, Mr. Singh said Bharat Tex is the vision of the Prime Minister. He said it is now an international event and every year there has been an increase of exhibitors, buyers, sellers and visitors. The minister said MSMEs and entrepreneurs are also attending the Bharat Tex. He said free trade agreements with different countries are benefiting the textile sector. The government yesterday semi-final at Dallas Stadium in Texas, US, in about 20 minutes from now at 12:30 a.m. Indian Standard Time. France will look to book their place in third consecutive FIFA World Cup final. Spain, on the other hand, will aim to advance into their first World Cup final since lifting the trophy in 2010. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम निशिगंधा। गम की गर्मी से दिल पिघलते रहे, गम की गर्मी से दिल पिघलते रहे, तजर्बे आंसुओं में ढलते रहे। एक लम्हे को तुम मिले थे मगर, एक लम्हे को तुम मिले थे मगर, उम्र भर दिल को हम मसलते रहे। तजर्बे आंसुओं में ढलते रहे। जिंदगी सरखुशी जुनू वहशत, सब उन्हीं रास्तों पर चलते रहे। उम्र भर हम दिल को मसलते रहे। एक लम्हे को तुम मिले थे मगर, उम्र भर हम दिल को मसलते रहे।

जहां के लिए। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत जिसे हम आपके लिए लेकर आए हैं, मुकेश और आशा भोसले की आवाज में। फिल्म है एक बार मुस्कुरा दो।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जब किसी का सपना आपकी आंखों में बस जाए तो हर रास्ता खूबसूरत लगने लगता है। सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे के सपनों को अपना बनाने का नाम है, क्योंकि सबसे खूबसूरत रिश्ते वही होते हैं जहां दो दिल एक ही ख्वाब साथ देखते हैं।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। दोस्तों, प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि भरोसा है जो हर मुश्किल वक्त में हिम्मत देता है, और जब किसी का साथ दिल से मिल जाए तो हर सफर आसान और हर खुशी दुगनी लगने लगती है। सच्चा प्यार वही है जो हर हाल में एक दूसरे का सहारा बनकर साथ निभाता है। तेरी आंखों का ये दर्पण अच्छा लगता है, तेरी आंखों का ये दर्पण अच्छा लगता है, इसमें चेहरे का अपनापन अच्छा लगता है। तुंध हवाओं तूफानों से जी घबराता है, हल्की बारिश का भीगापन अच्छा लगता है, तेरी आंखों का ये दर्पण अच्छा लगता है।

कुछ रिश्ते वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि और गहरे होते जाते हैं। यकीनन सच्चा प्यार यादों में नहीं, निभाए गए वादों और हर पल साथ खड़े रहने में बसता है। और जब रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ हो तो दूरियां भी उस प्यार को कभी कम नहीं कर सकती।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। कुछ पल शब्दों से नहीं सिर्फ एहसास से जिए जाते हैं। जब दो दिल एक दूसरे के करीब होते हैं तो दुनिया की हर आवाज फीकी लगने लगती है। सच्चा प्यार वही है जहां सुकून भी हो, अपनापन भी हो और हर धड़कन में बस एक दूसरे का एहसास हो।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। दोस्तों, कुछ लोग हमारी जिंदगी में यूं आते हैं कि उनकी मौजूदगी ही सबसे खूबसूरत तोहफा बन जाती है। सच्चा प्यार किसी एहसास का नाम नहीं, बल्कि दिल से दिल तक पहुंचने वाले उस रिश्ते का नाम है जहां हर पल सिर्फ और सिर्फ अपनापन और सम्मान महसूस होता है। बहुत खूब कहा है किसी ने कि मेरे हाथों की लकीरों में मोहब्बत लिख दे, मेरे हाथों की लकीरों में मोहब्बत लिख दे, मेरे कातिब मेरी तकदीर में रहमत।

लिख दे। वो जो मेरा है वही रूठ गया है मुझसे, वो जो मेरा है वही रूठ गया है मुझसे, उसके दिल में तू मेरे वास्ते उल्फत लिख दे। वो अदावत की किताबों को लिए बैठे हैं, वो अदावत की किताबों को लिए बैठे हैं, उन किताबों में बस एक लफ्ज़ से मोहब्बत लिख दे। मेरे कातिब मेरी तकदीर में रहमत लिख दे, मेरे हाथों की लकीरों में मोहब्बत लिख दे।

और इस गीत के साथ निशिगंधा का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी गीत सुहाने में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल इंडोनेशिया की राष्ट्रीय ऊर्जा परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने किसानों और घरों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने में भारत की उल्लेखनीय प्रगति से प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया। पंचायती राज मंत्रालय के आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम के तहत आयोजित 2 दिवसीय वर्चुअल आउटरीच कार्यशाला कल संपन्न हो गई। कार्यशाला में पंचायतों को अपने स्वयं के राजस्व स्रोत बढ़ाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उपायों पर जानकारी दी गई। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और अन्य 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कजाकिस्तान से सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान के जरिए उड़ान भरी। अनिल मेनन की यह पहली अंतरिक्ष यात्रा है। उनका यह मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम के एस्बेस्टन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला टेक्सस में फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक स्पेन ने 1-0 से मैच में बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi yesterday, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce to the Strait of Hormuz.
1: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al Bahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz yesterday. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers, among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned yesterday by the ministry. Responding to the question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, or POJK, Mr. Jaiswal said that the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from today. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi yesterday, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the event. Speaking to the media, Mr. Singh said Bharat Tex is the vision of Prime Minister. He said it is now an international event and every year there has been an increase of exhibitors, buyers, sellers and visitors. The minister said MSMEs and entrepreneurs are also attending the Bharat Tex. He said free trade agreements with different countries are benefiting the textile sector. Minister of New and Renewable Energy Prahlad Joshi yesterday chaired a meeting with the delegation of the National Energy Council of Indonesia. In a social media post, Mr. Joshi said that during the meeting, he shared India's steadfast progress in taking clean energy directly to our farmers and households. The minister also noted that under the PM Kusum scheme, 2.7 million agricultural pumps have been solarized across the country. He also highlighted the success of PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, which has benefited 4.7 million households. Mr. Joshi urged the delegation to visit the projects and witness this transformation on the ground. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested proclaimed offender Shibu Kumar Singh, one of the accused in the Sukanta Ghosh murder case. He was arrested yesterday from his hideout at Rai Ganj Road in Gorakhpur, where he was allegedly living under the assumed name of Akhilesh Kumar Shahi. According to the CBI, the accused had been absconding for several years and has been declared a proclaimed offender in September 2016. The CBI said he was apprehended on the basis of human intelligence and technical inputs. After obtaining a transit warrant, the accused will be taken to Kolkata today and produced before the competent authority. Nepal and India yesterday held meetings with a focus on strengthening bilateral cooperation in the energy sector, with emphasis on cross-border electricity trade, officials said. Minister for Energy, Water Resources and Irrigation, Biraj Bhaktashrestha, held a productive discussion with Power Secretary Pankaj Agrawal and Additional Foreign Secretary Munu Mahawar of the Government of India in Kathmandu yesterday. In cricket, India defeated England by 6 wickets in the first of the 3-match ODI series at Edgbaston in Birmingham last night. Chasing a target of 259 runs set by England, India scored 262 for 4 in 45.2 overs. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। जब ये दिल किसी को सच्चे मन से चाहने लगता है तो हर धड़कन उसी का नाम लेने लगती है। और मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है कि वो बिना कहे भी सब कुछ बयां कर जाती है।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कुछ लोग हमारी जिंदगी में यूं आते हैं, उनकी मौजूदगी एक खूबसूरत तोहफा बन जाती है और सच्चा प्यार एहसान का नाम नहीं होता बल्कि दिल से दिल तक पहुंचने वाले रिश्ते का नाम है, जहां अपनापन, सम्मान, सच्ची मोहब्बत सब कुछ साथ होता है। उसके साथ रहने से हर रात चांदनी और हर पल खास लगने लगता है। प्यार वही है जो साधारण लम्हों को भी यादगार बना दे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जब दिल को उसकी अपनी धड़कन मिल जाती है तो जिंदगी की हर राह खूबसूरत लगने लगती है। सच्चा प्यार किसी वजह का मोहताज नहीं होता, बस वो दिल से दिल तक पहुंच ही जाता है। और जब मोहब्बत सच्ची हो तो हर दिन एक नई मुस्कान और हर पल एक नई खुशी लेकर आता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जी हाँ, कुछ रिश्ते किस्मत नहीं दिल चुनता है। जब किसी की मुस्कान आपकी खुशी बन जाए और उसकी मौजूदगी आपका सुकून, तभी मोहब्बत अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में होती है। सच्चा प्यार वही है जहां दो दिल बिना किसी शर्त के एक दूसरे को अपना लेते हैं। बहुत खूब कहा है किसी ने कि गम गुसारों की बात करते हो, किन सहारों की बात करते हो, हम सभी मौसमों से गुजरे हैं, क्यों बहारों की बात करते हो। हम सभी मौसमों से गुजरे हैं, किन सहारों की बात करते हो।

छुपके आता है कोई ख्वाब चुराने मेरे, फूल हर रात महकते हैं सिरहाने मेरे, बंद आंखों में मेरी झांकते रहना उनका, शब बनाती है यूं ही लम्हे सुहाने मेरे, जब भी तन्हाई में मैं उनको भुलाने बैठूं, याद आते हैं मुझे गुजरे जमाने मेरे। दोस्तों, मोहब्बत की खूबसूरती उसकी लंबाई में नहीं बल्कि खास लम्हों में होती है जो हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात भी उम्र भर की सबसे प्यारी याद बन जाती है, क्योंकि सच्चा प्यार वक्त से नहीं एहसास से मापा जाता है।

और इसी के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने ईरान के सामने हाल की घटनाओं को लेकर अपनी कड़ी चिंता और विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और कई भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के जरिए समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक आज से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 4 अहम मुद्दों, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, श्रम बाजार को औपचारिक बनाना और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी और समावेश को बढ़ाने पर चर्चा होगी। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और अन्य 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कजाकिस्तान से सोयुज MS-29 अंतरिक्षयान के जरिए उड़ान भरी। अनिल मेनन की ये पहली अंतरिक्ष यात्रा है। उनका ये मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला टेक्सस में फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक स्पेन ने 2-0 से मैच में बढ़त बना ली है। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है रात सुरमई। मैं हूं एक बार फिर आपके साथ सुरभि। बहुत खूब कहा है किसी ने कि गुजरी है अपनी जिंदगी तन्हाइयों के साथ, गुजरी है अपनी जिंदगी तन्हाइयों के साथ, जिंदा है सर पे मौत की परछाइयों के साथ। हमसे बिछड़ के भटकेगा हमदम तू देखना, दिल में बसाया है तुझे गहराइयों के साथ। जब दिल किसी के लिए धड़कने लगता है तो हर एहसास अपनी कहानी खुद लिखने लगता है। सच्ची मोहब्बत को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आंखें और मुस्कान ही दिल की हर बात कह जाती हैं। प्यार वही है जो हर धड़कन में सुकून बनकर बस जाए।

इश्क में खुद से मोहब्बत नहीं की जा सकती, इश्क में खुद से मोहब्बत नहीं की जा सकती, पर किसी को ये नसीहत नहीं की जा सकती। कुछ तो मुश्किल है बहुत कार्य मोहब्बत और कुछ, कुछ तो मुश्किल है बहुत कार्य मोहब्बत और कुछ, यार लोगों से मशक्कत नहीं की जा सकती, इश्क में खुद से मोहब्बत नहीं की जा सकती, पर ये नसीहत हर किसी को नहीं की जा सकती।

रात सुरमई प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। सच्चा प्यार सिर्फ खुशियों में साथ निभाने का नहीं होता, बल्कि आंसुओं को मुस्कान में बदल देने का नाम है। जब कोई दिल से आपका अपना बन जाता है तो उसकी एक मुस्कान ही हर दर्द को हल्का कर देती है। यही तो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत पहचान है।

रात सुरमई प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। हर मोहब्बत का मुकम्मल होना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सच्चा प्यार पाने में नहीं बल्कि सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेने में होता है। जो प्यार दिल से किया जाए वो हमेशा इज्जत, दुआ और खूबसूरत याद बनकर दिल में रहता है।

रात सुरमई प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। सच्ची खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं बल्कि मासूमियत, मुस्कान और दिल की सादगी में होती है। जब किसी की भोली सी मुस्कान दिल को छू जाए तो हर पल अपने आप में खास हो जाता है। प्यार वही है जो सादगी में भी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी ढूंढ ले।

दोस्तों, पुराने गीतों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इन्हें जितनी बार सुनिए, हर बार ये दिल को नई ताजगी दे जाते हैं। और अब पेश है एक और अनमोल धुन, जिसमें प्यार की मासूमियत और संगीत की मिठास दोनों साथ चलते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और साथ ही साथ आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हमराही। दोस्तों, रात धीरे धीरे और भी हसीन होती जा रही है और इसी खूबसूरती को संगीत के रंगों से सजाने का सिलसिला हम और आप मिलकर कर रहे हैं। आइए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसके बोल और धुन आज भी हर उम्र के श्रोताओं को पसंद आते हैं।

कितना सुकून मिलता है ना जब ये पुराने गीत कानों में घुलते हैं और यादों की खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक ऐसे ही शानदार गीत की तरफ।

दोस्तों, रात अब अपनी पूरी रौनक पर है और हम भी इस सफर में आपके साथ हैं। दोस्तों, पुराने गीत केवल मनोरंजन नहीं करते बल्कि जिंदगी के कई खूबसूरत एहसासों को भी अपने साथ लेकर आते हैं। और अब पेश है एक ऐसा गीत जो मोहब्बत की सादगी को बहुत खूबसूरती से बयां करता है।

दोस्तों, संगीत कभी पुराना नहीं होता, बस वक्त बदलता है। लेकिन अच्छी धुनें हमेशा नई सी लगती हैं। और इसी एहसास के साथ चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत।

दोस्तों, पुराने गीतों की ये खास बात होती है कि ये कभी शोर नहीं मचाते, बल्कि धीरे धीरे हमारे दिल में उतर जाते हैं, उन यादों की तरह जो हमारे दिल के किसी कोने में छुपी हुई हैं। दोस्तों, चलिए अब पेश है कार्यक्रम का अगला खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, यादें अक्सर किसी धुन का सहारा लेकर ही लौटती हैं, और यही वजह है कि पुराने गीत हमेशा हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं, हमारे लिए बहुत खास होते हैं। तो आप सुनिए कार्यक्रम की अगली शानदार प्रस्तुति।

दोस्तों, रात का ये सफर अब आगे बढ़ रहा है और संगीत की मिठास भी। पेश हुए कार्यक्रम का अगला गीत, अगला और आखिरी गीत, और इसी गीत के साथ अपने दोस्त शमीम को इस कार्यक्रम हमराही से विदा दीजिए। मुलाकात होती है आपसे अगले कार्यक्रम अरुणिमा में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ईरान के उपमिशन प्रमुख को तलब कर भारत ने हाल की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय नागरिक की जान गई है और कई अन्य भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि यह पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 6 जिलों में 37,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इस वर्ष बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक प्रभावित जिला उत्तर लखीमपुर है, जहां 35,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम के एस्बेस्टन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. New Delhi has said it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi yesterday, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce to the Strait of Hormuz.
1: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al-Bahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz yesterday. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers, among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned yesterday by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, or POJK, Mr. Jaiswal said that the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from today. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi yesterday, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in the India's trade journey. India's largest global textile event, BharatTex 2026, began at Bharat Mandapam in

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम अरुणिमा में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस सुनहरे सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसने बरसों से संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई हुई है। आइए उस गीत को सुनते हैं।

वाह क्या मधुर गीत था दोस्तों। पुराने गीतों की यही तो खासियत है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए लेकिन इन गीतों की मधुरता कभी नहीं बदलती। हर शब्द, हर धुन, हर एहसास सीधे दिल तक पहुंचता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। ये गीत अपनापन, जीवन की सरल भावनाओं को बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। आइए बढ़ते हैं उस गीत की तरफ।

दोस्तों, पुराने दौर के संगीतकारों ने जिन धुनों को रचा, गीतकारों ने जिन शब्दों को गढ़ा, वे आज भी उतने ही ताज़ा महसूस होते हैं जितने उस वक्त थे। यही वजह है कि पीढ़ियां बदलती हैं, लेकिन इन गीतों का जादू कभी भी कम नहीं होता।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। कार्यक्रम अरुणिमा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, आप सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसे सुनते ही बीते दिनों की मीठी यादें ताज़ा हो जाती हैं।

दोस्तों सचमुच संगीत भावनाओं की ऐसी भाषा है जिसे हर दिल समझता है। पुराने दौर के संगीतकारों ने धुनों में जो जादू भरा वही जादू आज भी हर पीढ़ी को अपनी तरफ खींच लेता है। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत।

दोस्तों, संगीत की यही खूबसूरती है कि ये बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है। हर धुन एक नई कहानी सुनाती है और हर गीत किसी ना किसी एहसास से जुड़ जाता है। तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा।

दोस्तों, रात की इस पहर में जब कोई मधुर धुन कानों में उतरती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वक्त कुछ पल के लिए ठहर गया हो। और इसी एहसास को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम के अगले गीत के साथ।

दोस्तों, ज़िंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर अपने लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं, लेकिन दिन का या रात का कोई भी पल हो, अगर कुछ वक्त के लिए अच्छे संगीत के साथ बिता लिया जाए तो मन फिर से तरोताज़ा हो उठता है। आइए इस सुरीले सफ़र को आगे बढ़ाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम अरुणिमा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, हर गीत अपने साथ एक कहानी लेकर आता है, कहीं प्रेम की, कहीं बिछड़ने की, कहीं उम्मीद की, तो कहीं जीवन को मुस्कुराकर जीने की। और कहते हैं कि अच्छा संगीत कभी पुराना नहीं होता, यही कारण है कि वर्षों पहले बनी धुनें आज भी उतनी ही ताज़ा लगती हैं और हर बार सुनने पर एक नया एहसास दे जाती हैं। चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, पुराने दौर का संगीत सादगी, मधुरता और भावनाओं का सुंदर संगम था। हर धुन में अपनापन था, हर बोल में जीवन की कोई ना कोई सच्चाई थी। तो आइए अब सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो अपने शब्दों और संगीत से दिल को छू लेता है।

दोस्तों, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम का आखिरी गीत, और इसी गीत के साथ अपने दोस्त शमीम को दीजिए अलविदा। मुलाकात होती है आपसे अगले घंटे, अगले कार्यक्रम भोर सुहानी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत ने हाल की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय नागरिक की जान गई है और कई अन्य भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले विधायी गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्यों का सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ये समापन सत्र राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्षगांठ समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 6 जिलों में 37,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इस वर्ष बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक प्रभावित जिला उत्तर लखीमपुर है, जहां 35,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंगम के एस्बस्टेन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and United Kingdom comes into force today. Simultaneously, the agreement on social security, also referred to as the Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of the tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi yesterday, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK CETA as a defining milestone in India's trade journey. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce to the Strait of Hormuz. India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT El Bahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz yesterday. Responding to a question on protests in POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. India is currently operating 24 nuclear power reactors across 7 sites with a total installed capacity of 8.78 gigawatt. 10 more reactor units with a combined capacity of 8,000 megawatt are under construction. These reactors are pressurized heavy water reactors, boiling water reactors, and light water reactors. The country is mainly using natural uranium fuel to run the pressurized heavy water reactors to produce nuclear energy. Government said that India is steadily expanding its nuclear power program to strengthen the energy security and support clean economic growth. A major outcome of the third India-Australia annual summit, which was held in Melbourne last week, was the finalisation of the administrative arrangement under the India-Australia Civil Nuclear Cooperation Agreement. The Enforcement Directorate, ED, has arrested a private software and fintech firm chairman in connection with the alleged Mahadev online betting app-linked money laundering case. The agency had recently attached assets worth over 940 crore belonging to the chairman, his family members and entities alleged owned and controlled by him. The ED has alleged that proceeds of the crime generated through the illegal betting app were routed into these entities. The flood situation in Assam continues to remain critical, with more than 37,000 people affected across 6 districts. According to the latest report of the Assam State Disaster Management Authority, 37,032 people in 99 villages under 12 revenue circles are currently affected by floods. One person lost his life due to drowning in the Charudwar revenue circle of Sonitpur district, taking this year's flood-related death toll to 4. North Lakhimpur district remains the worst affected district, accounting for over 35,000 affected people. In men's cricket, India defeated host England by 6 wickets in first one-day international of 3-match series at Edgbaston in Birmingham last night. With this, the men in blue now lead the series 1-0, ending their losing streak in international cricket. Opening to bat first, England got bundled out for 258 runs in the 48th over. Joey Root scored highest 76 runs and remained not out, while Liam Dawson also contributed crucial 68 runs. For India, Akshar Patel backed 4 wickets. In reply, Shubman Gill-led side comfortably overhauled the target in the 46th over, riding on skipper's fabulous innings of 80 runs, after which he got retired hurt. Moreover, Washington Sundar and Akshar Patel both crossed the half-century mark and finished the match being unbeaten. Akshar Patel was adjudged player of the match for his all-round performance. In football, Spain stormed into the final of FIFA World Cup 2026 after producing a commanding 2-0 victory over France in the first semi-final clash at Dallas Stadium in Texas, US last night. Michael Otheboll opened the score in the 22nd minute before Pedro Porro made sure of the win with a brilliant second goal. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम भोर सुहानी, जहां बातें होती हैं दिल की, मुस्कुराहट की और जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने की। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शमीम खान। आज हम साथ रहेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, बस कुछ प्यारी बातें, कुछ खूबसूरत गीत और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा। कभी कभी जिंदगी इतनी तेज दौड़ती है कि हम खुद से बात करना भूल जाते हैं, लेकिन आज का ये सफर उसी भूली हुई बातचीत के नाम है। तो गहरी सांस लीजिए, अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाइए और शुरू करते हैं एक खूबसूरत सोच के साथ। दोस्तों, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। कल कैसा था उससे ज्यादा जरूरी है कि आज आप क्या सोचते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले खूबसूरत गीत के साथ, जो जिंदगी से पूरी तरीके से भरा हुआ है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है भोर सुहानी और शमीम है अभी आपके साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है या ध्यान दिया है कि छोटे बच्चे कितनी जल्दी मुस्कुरा देते हैं? उन्हें महंगे खिलौनों की ज़रूरत नहीं होती, बारिश की एक बूंद, तितली या फिर मिट्टी में खेलना, उन्हें बस इतनी सी बात खुश कर देती है। शायद हम बड़े होते होते खुश रहने की वजहें बहुत बड़ी बना लेते हैं। आज कोशिश कीजिए एक छोटी सी खुशी ढूंढने की। किसी अपने को कैसे हो पूछ लीजिए, या थोड़ा सा आराम करिए, या फिर आईने में खुद को देखकर कहिए, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।